आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी अच्छा। एंड इंटरनेशनल यूथ सॉकर टूर्नामेंट इस लेबर डे वीकेंड पर रैली WRAL सॉकर पार्क में एक प्रतियोगिता जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय युवा सॉकर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इसमें दुनिया के 18 देशों की 140 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। यानी सोमवार को इसके फाइनल मुकाबले जो है वो खेले गए, जिससे पूरे वीकेंड शहर में खेल प्रेमियों का भारी जमावड़ा जो है वो देखने मिला। एंड सॉकर एक ऐसा गेम है जो हर किसी का फेवरेट है, हर कोई चाहता है कि खेले, एंजॉय करे। तो इसके फैन तो देश और दुनिया भर में अलग लेवल के ही है। फिलहाल एंजॉय करते हैं, अगला ही गाना सुनते रहिएगा रेडियो नायरा

मौसम के बारे में अगर बात करूँ तो जहाँ एक तरफ गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, वही इस वीकेंड आए अचानक तेज आंधी तूफान के कारण वेक काउंटी विशेषकर वेंडल इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है। जी हाँ, कई जगहों पर पेड़ उखड़ने से बिजली की लाइनें टूट गई, जिससे ड्यूक एनर्जी के हजारों उपभोक्ताओं को बिना बिजली के रहना पड़ा। अकेले वेक काउंटी में 6,000 से अधिक घरों की बत्ती जो है वो गुल हो गई थी। मतलब नेचर इज द ओनली थिंग, और नेचर के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेना यही समझदारी है, और प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में। तो ये जो नुकसान हुआ है बहुत नुकसानदायी था, एंड सबको अपना ख्याल रखना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है।

वेल एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड प्लास्टिक का यूज जो है वो इंडिया में काफी बढ़ गया है, कुछ भी त्योहार आता है तो प्लास्टिक का यूज काफी बढ़ रहा है। फॉग मशीन के लिए प्लास्टिक की मशीन है, उसके बाद फटाके आ रहे हैं तरह तरह के प्लास्टिक के, जो कि कचरा फैलाते हैं। एंड प्लास्टिक तो कचरा है ही, धरती पर प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। और फिर प्लास्टिक को जोड़ा जा रहा है परंपरा के साथ, मतलब ये परंपरा बनते जा रहा है धीरे धीरे कि प्लास्टिक के पटाखे जलेंगे तो ही जो है वो हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें हैं। तो मैं यही कह रहा था कि प्लास्टिक का यूज़ जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए ताकि ये परंपरा ना बने, और एक बार ये परंपरा बन जाता है तो फिर इसे वैनिश करना मुश्किल है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नैरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी बॉलीवुड की खबरों का। मुंबई माया नगरी से, गली आरों से मैं आपके लिए बॉलीवुड की खबरें लाता हूं। तो पहली खबर है कि बॉक्स ऑफिस से ये खबर आ रही है, जहां मिर्जापुर द मूवी का ज़बरदस्त जलवा जो है वो देखने मिल रहा है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त जलवा देखने मिल रहा है। सिनेमाघरों में रिलीज़ होते ही इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ही करीब 93 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है और ये बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। थिएटर्स में अपने पसंदीदा किरदारों को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। एंड गुड्डू भैया क्या ही कहना, एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

के फैंस जो है वो अलग लेवल के ही है ना। तो अगली खबर ये है कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से जुड़ी है अगली खबर। उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस फिल्म का फाइनल कट लॉक हो चुका है और अब इसके म्यूजिक और VFX पर तेजी से काम चल रहा है। इस फिल्म की खास बात यह है कि शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी इस फिल्म में अपना थिएट्रिकल डेब्यू जो है वो करने जा रही है। फैंस इस फादर एंड डॉटर की जोड़ी को देखने के लिए रेडी हैं। मतलब ये जो फिल्म है काफ़ी एक्शन वाली फिल्म होने वाली है। VFX के बारे में अभी से चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी तो है, पक्का लोकल भी है। Say whoa!

0: नशे से जड़ गई है
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड दरअसल मुंबई के एक इवेंट के दौरान जब महाराष्ट्र सरकार ने एक मंत्री ने संजू बाबा से मराठी में बात करने या मराठी सीखने के लिए कहा, तो संजय दत्त ने अपने ही अनोखे अंदाज में उन्होंने ये जवाब दिया कि वो कह रहे थे 6 साल तक पुणे की यरवड़ा जेल में रहकर मुझे मराठी नहीं आई, तो अब कैसे आएगी आप। लेकिन वो 6 साल रहने के बाद भी मराठी सीख नहीं पाए। उनका ये बयान जो है वो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। एंड बाबा इज बाबा जो मतलब उनके मजाकिया अंदाज में आंसर देते हैं वो तो कुछ अलग लेवल के ही होते हैं। तो एंजॉय करते हैं फिलहाल अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Here we go.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड रणबीर कपूर के फैंस के लिए जो खबर है इनको झटका लग सकता है। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर का जो टीजर इसी महीने 28 सितंबर को आने वाला था उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। मेकर्स ने अपनी प्लानिंग बदल दी है और अब इस फिल्म का पहला लुक रणबीर कपूर की ही दूसरी महागाथा फिल्म रामायण के साथ रिलीज किया जाएगा, यानी फैंस को अब थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। रणवीर सिंह का जो लुक है वो क्या रहने वाला है इस फिल्म में, इसके लिए फैंस जो है वो काफ़ी वेट कर रहे हैं, क्योंकि रणवीर सिंह चाहे उनकी फिजिक रहे, चाहे उनकी हेयर स्टाइल रहे, चाहे उनकी बियर्ड रहे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अलग दिखाई देते हैं। इस बार उनका क्या लुक रहेगा, इसको लेकर फैंस काफ़ी जो है वेट कर रहे हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एक सरप्राइज हिट फिल्म हनुमान अंश को लेकर है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चुपके से 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके सबको हैरान कर दिया है। क्या बात है, बधाई हो। इस फिल्म की शानदार सफलता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस फिल्म को अपने पूरे राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने इसकी सफलता पर खुशी जताते हुए इसके पार्ट टू की भी घोषणा कर दी है। मतलब पार्ट टू आने वाला ही है। पार्ट वन देखा, मैंने भी देखा है पार्ट वन, हनुमान अंश का पार्ट वन आज मैंने देखा है एंड रियली बहुत अच्छी फिल्म है एंड डायरेक्शन भी कमाल का है। और उसके बाद मतलब कैसा यूज़ किया जाता है ना, कैसे आर्टिस्ट को यूज़ किया जाता है, ये फिल्म अच्छे से सिखाती है एंड बहुत मज़ा आ गया। पार्ट टू का वेट मैं भी कर रहा हूँ।

हेलो हाय कसकाय, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड अक्षय कुमार सैफ अली खान की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म हैवान का एक गाना जो है वो 7 सितंबर यानी आज शायद रिलीज हो सकता है एंड फैंस काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये गाने के बाद अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान ये शायद आई गेस एक साथ कभी किसी गाने पर थिरकते हुए नज़र नहीं आए, बट वेरी सुन हमको देखने मिलेगा कि ये जोड़ी फिर से एक बार परफॉर्म करेंगी। एंड बहुत ही ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने जो विलेन का रोल इस मूवी में किया है वो काफ़ी एक अलग लेवल का हो सकता है। एंड सैफ अली खान नवाब की तो एक्टिंग इट्स सैफ अली खान का तो क्या ही कहना, रेस में तो आप देख लो मिनट मिनट पर कैसी बाजी पलटती थी, तो क्या अब ऐसा होने वाला है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, देन यू विल गेट एन ऐप। ऐप मिलने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे एनर्जी से भरपूर आरजेस के इंटरटेनमेंट भरे शो, एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रेडियो नायरा एंजॉय कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। एंड फिलहाल कैसे चल रही है आपकी मंडे की आज की शाम? खुश तो बहुत हो गए आप, क्योंकि काम का स्ट्रेस जो है वो कम लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है कि थके हुए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यार, वर्क करने के बाद तो थक ही जाते हैं ना, घर जाने का एंड घर पे बना हुआ एक बढ़िया सा मील लेने का वक्त अभी हो गया है। एंड यू नो, घर का खाना तो यार चाहे वीकेंड में कितना भी बाहर का खा लो, कुछ भी करो, लेकिन एट द एंड घर का दाल चावल ही अच्छा लगता है ना। तो ड्राइव सेफली कीजिए, ड्राइव करते हुए अपने रफ्तार पर काबू पाइए, क्योंकि गाड़ी अगर आपकी सही रफ्तार में रही तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट से शो पे, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। तब तक के लिए एंजॉय योर मील, एंजॉय योर ड्राइव, एंड सुनते हैं अगला ये गाना। मिलता हूँ कल, गुड नाइट, शबा खैर।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा

आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी। साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा कर गई लूंगी। अरे कब्जा कर गई लूंगी। तौबा तौबा आज पिछोरी बन गई एक ड्रामा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे। और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा। माँ एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of The Shockie.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Baskar yaar.
1: Healthy living means Indian tradition. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा only on Radio Nayra.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: The Jaipur Literature Festival comes to Raleigh, September 11th through 13th. Keynote speaker Shashi Tharoor, former United Nations Under Secretary General. Featuring author and neurologist Priya Anand, novelists Manil Suri and Karan Mahajan, and James Beard award-winning chef Vishvesh Bhatt. Friday keynote, $35. All day Saturday, $50. For details, visit jlflitfest.org/North Carolina.
2: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड गेस व्हाट आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी सी यू देयर Thank you so much. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ कहानियों के साथ
3: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at
0: 919-101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM Pakka Desi, Pakka Local

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स प्लानिंग योर बर्थडे वेडिंग ग्रेजुएशन पार्टी कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 414 90 एएम पक्का देसी पक्का लोकल.

प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and All. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोग।

0: हाँ यार, एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 40.90 AM, 99.9 FM, LG3, 4 Telugu, Naira, same. मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक।
1: वेल, हमारा ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग डील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैम्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज, इंस्पायर्ड हार्मनीज, इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन करिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी।

जाना, आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग एल्डून सन टॉप। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4 49 AM, 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर।
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the lights, known as Mr. Saturday Night. Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart popping and topping with his high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायगा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज जूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूंस एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as Jet Truck, Parachute, Jump Team and Aerobatic Pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Paka Desi, Paka Local.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसा, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांदा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांदा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: जाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Is the market our gaadi ke baad one more time? Welcome hai ji on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स 4.0 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स 4.0 स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स 4.0. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

हरा एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

meet the confirmed contestants of this season for Big Boss 20. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Bigg Boss 20 is set to bring a fresh mix of personalities to the house with MC Mary Kom, Amrapali Dubey, Udithi Singh, Arifsha Khan, Aman Gandhi, Kazi Ahmed Takir, Harsh Makher, a.k.a. Young DSA, Kushal Tanwar, a.k.a. Gullu, Riya Yadav, Love Gill, Rohit Khan, Isha Rikhi, Mahi Viz, Asif Khan, Riti Tiwari, Kanika Mann, and Tanmay Singh, a.k.a. Scout OP. Are you excited for the cast? Bahut अलग कास्ट है यार इस बार. मतलब मैंने तो बिग बॉस देखना काफी वक्त से बंद कर दिया है, बट व्हेन आई यूज्ड टू वॉच इट, आई रियली लव्ड, आई एंजॉयड इट एक्चुअली. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन नायरा.

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Daira
1: mein kho jao. Hello, hello, hello, people. Pranam, namaste, adab, sister Kal, came cho, and a very, very warm hello to each and every one of you. Aur ek bahut hi pyara sa hello once again un sabhi listeners ko jo is waqt kahin car mein hain, kisi kitchen mein chai bana rahe hain, office mein kaam kar rahe hain, ya bas headphones laga kar duniya se thoda sa break le rahe hain. आ गई मैं प्राची और आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 FM HD4 101.9 FM और 1490 AM पर. सो फ्रेंड्स, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि किसी ऐसी आवाज़ का जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए, कैरेक्टर्स को आवाज़ दी, मूड्स को आवाज़ दी, शरारत को आवाज़ दी, मोहब्बत को आवाज़ दी, दर्द को आवाज़ दी, और कभी कभी बस एक हाय से पूरा सीन बदल गया. आज 8th ऑफ सितंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा भोसले जी का बर्थडे, 93rd बर्थडे. और आज मैं आपसे उनकी बायोग्राफी सुनाने नहीं आई हूँ, ना बर्थ प्लेस, अवार्ड्स, रिकॉर्ड, ये सब तो कहीं भी गूगल में आपको बता देगा. आज हम कुछ और करेंगे. आज हम पूछेंगे आशा भोसले बनी कैसे. बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, जब उनकी आवाज़ को एक पर्टिकुलर इमेज में फिट कर दिया गया था, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉक्स तोड़ दिया कम्प्लीटली. और शायद इसीलिए आशा जी की कहीं कहानी सिर्फ म्यूज़िक की कहानी नहीं है, इट्स अ स्टोरी अबाउट रीइन्वेंशन, घिर कर खड़े होने की, अपनी जगह बनाने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी आवाज़ को किसी और की डेफिनेशन में फिट ना करने की. तो पर्दे पर एक सवाल आपसे भी, अगर आपको आशा भोसले जी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, क्या कहेंगे? वर्सेटाइल, बोल्ड, मिशीवियस, लेजेंडरी या सिंपली आशा? बिकॉज ऑनेस्टली उनकी आवाज़ का नाम ही काफ़ी है, है ना? चलिए इस सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी आवाज़ से जो एलिगेंस भी थी और थोड़ी सी शरारत भी. आशा भोसले जी, बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ. जब भले ऊपर से भी आप सुन रहे हैं तब भी हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंसेरा रेडियो 99.9 FM HD4 101.9 FM और 4090 AM। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा जी का बर्थडे। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, बिकॉज एवरी लेजेंड हैज़ बिफोर द लेजेंड स्टोरी, है ना। आशा जी वॉज बॉर्न इन टू द मंगेशकर फैमिली। म्यूजिक उनके घर की हवाओं में था। उनके फादर दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल म्यूजिशियन और थिएटर पर्सनालिटी थे, तो म्यूज़िक उनके लिए हॉबी नहीं था, लाइफ था। लेकिन टैलेंट होना और सक्सेसफुल होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और आशा जी को ये डिफरेंस बहुत जल्दी समझ आ गया। उनकी एल्डर सिस्टर लता मंगेशकर जी, इमेजिन आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिकल फैमिली में हैं और आपके सामने एक ऐसी आवाज़ है जो खुद हिस्ट्री बन रही है। कंपैरिजन तो होना ही था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आशा जी ने इवेंचुअली कंपैरिजन को कंपटीशन बनाने के बजाय अपनी लेन बना ली। और वो लेन स्टार्टिंग में ग्लैमरस नहीं थी। टॉप हीरोइंस के लिए प्रिस्टीन रोमांटिक सॉन्ग्स नॉट ऑलवेज, उन्हें अक्सर सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वैम्प्स, कैबरे और लेस प्रेस्टीजियस फिल्म्स के सॉन्ग्स मिलते थे। और यही आशा जी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उन्होंने कहा, नहीं ये मुझे क्यों मिला, उन्होंने कहा ठीक है ये मिला है, मैं इसी को अनफॉरगेटेबल बनाऊंगी। दैट इज अ लेसन। लाइफ में हम सबको कभी ना कभी स्क्रैप्स मिलते हैं, है ना। किसी को प्रमोशन नहीं मिलता, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, किसी को लगता है मैं डिजर्व करती थी पर किसी और को क्यों। लेकिन कभी कभी आपको जो रोल मिलता है वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है।

आशा जी ने कैबरे को सिर्फ कैबरे नहीं रहने दिया, उन्होंने सेंशुअलिटी को टेक्निक बना दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन को आर्ट बना दिया, प्लेफुलनेस को सिग्नेचर बना दिया, और फिर इंडस्ट्री को रियलाइज हुआ, अरे ये सिंगर तो किसी भी मूड में जा सकती है। सोचो, अगर आशा जी ने स्टार्टिंग के डिफिकल्ट ईयर्स में गिवअप कर दिया होता तो बॉलीवुड की म्यूजिक हिस्ट्री कितनी डिफरेंट होती। मे बी कभी कभी लाइफ आपको बेस्ट सीट नहीं देती, वो आपको कॉर्नर सीट देती है और आप वही कॉर्नर स्टेज बना देते हो। सो फ्रेंड्स, आज का शो इसी बात का सेलिब्रेशन है, और अब एक ऐसी आवाज जिसमें मस्ती भी है, रिदम भी है, और वो अनमिस्टेकेबल आशा मैजिक भी। सुनिए नेक्स्ट टू सॉन्ग्स, आई विल बी बैक।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Welcome back to Sincera Radio, Naira Pay 99.9 FM, HD4 101.9 FM, or 1490 AM. Hand up your energy. Yes. So, friends, अगर आपको लग रहा है कि आशा जी का करियर बस टैलेंट से बना तो एक स्टूडियो स्टोरी सुनो. 1966 फिल्म थी तीसरी मंजिल, है ना, जब इसका भी गाना सुना हमने, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा. और प्रॉब्लम, सॉन्ग वॉज फास्ट, वेरी फास्ट, ऐसा फास्ट कि नॉर्मल सिंगिंग नहीं, एथलेटिक ट्रेनिंग चाहिए थी. आरडी बर्मन जी यानी पंचमदा आशा जी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक पॉइंट पर आशा जी को लगा ये मुझसे नहीं होगा. इमेजिन दैट, आशा जी द आशा भोसले सेइंग आई कैन डू दिस, बट देन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द सॉन्ग शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, ब्रेथ कंट्रोल, टाइमिंग, एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी 500 की बैट लगी. वॉज इवन प्लेस्ड अराउंड वेदर शी कुड मैच द स्पीड एंड एनर्जी रिक्वायर्ड. पंचमदा बिलीव्ड शी कुड और आशा जी ट्रेन्ड एंड देन शी डिलीवर्ड. दिस इज द पार्ट आई लव, बिकॉज टैलेंट गेट्स यू इन टू द रूम बट प्रिपेरेशन मेक्स यू अनफॉरगेटेबल. आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, अवार्ड्स देखते हैं, वायरल वीडियोस देखते हैं, बट रिहर्सल्स, प्रैक्टिस, फेल टेक्स, नोबडी पोज देयर, राइट? आशा जी की स्टोरी हमें याद दिलाती है, बिहाइंड एवरी एफर्टलेस परफॉर्मेंस इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट. और ये सॉन्ग बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में एक टर्निंग पॉइंट जैसे फील होता है. फास्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड, ब्रेथ एकदम हैवी, एनर्जेटिक एंड कम्प्लीटली फ्यूरलेस. और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, शी डिड नॉट से लाइक चेंज द सॉन्ग फॉर मी, शी एसेंशियली से लाइक चैलेंज एक्सेप्टेड. सो आपकी लाइफ में भी कोई आजा आजा मोमेंट है, कोई ऐसा काम जिसे देख कर आपने पहले कहा था ये मुझसे नहीं होगा और फिर आपने कर दिखाया, सेंड अस अ मैसेज. आई वुड जेन्युइनली लव टू हियर योर स्टोरी. और अब सुनिए वो आवाज़ जिसने एक डिफिकल्ट सॉन्ग को लेजेंडरी बना दिया.

0: 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9. Welcome back to Sunzara Radio, 99.9 FM, HD4, 101.9 FM or 1490 AM. और अगर आप अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आज हम एक म्यूजिकल लेजेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आशा जी. यस, आशा भोसले जी. और अब एक रिकॉर्डिंग रूम स्टोरी. सॉन्ग था पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, याद आया? हाँ. आज हम इस सॉन्ग को सुनते हैं और हमें लगता है कि अरे वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस. लेकिन इमेजिन द टाइम व्हेन इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड. द लिरिक्स वर कंसीडर्ड सो बोल्ड, सो सेंसुअल, कि जो लिरिसिस्ट थे मजरू सुल्तानपुरी जी, रिपोर्टली फेल्ट अनकंफर्टेबल विद व्हाट ही हैड रिटन. एंड द स्टोरी गोज, ही एक्चुअली लेफ्ट द स्टूडियो. उन्होंने आशा जी से कुछ इस सेंस में कहा कि बेटी, मैं गंदा गाना लिखा है मैंने. और आशा जी वॉज लाइक शी लव एंड डिड हर जॉब लाइक अ प्रोफेशनल, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द सॉन्ग नीडेड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. इट नीडेड सिडक्शन, इट नीडेड अ थियोरिटिकलिटी, इट नीडेड ब्रेथ, इट नीडेड अ ड्रामा, इट नीडेड आशा जी. So Asha ji did not sing the song apologetically, she owned it. And that's what changed the perception. People started realizing this isn't a singer merely singing bold songs. This is a singer who can interpret a character without a fear. There's a difference, a very big difference. And maybe that's why Asha ji's career is so fascinating. She never allowed other people's comfort zones to become her boundaries. आपको एक रोल दिया, she explored it. आपने कहा ये difficult है, she practiced it. आपने कहा ये unusual है, she experimented. आपने कहा ये आपकी image नहीं है, she probably said why not. और दोस्तों, समटाइम्स दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन वी नीड इन आवर लाइव्स. व्हाई नॉट, व्हाई कांट आई स्टार्ट अगेन, व्हाई कांट आई लर्न समथिंग न्यू, व्हाई कांट आई चेंज माई इमेज, व्हाई कांट आई डू समथिंग एट 40, एट 50 और एट 60. एज इज जस्ट अ नंबर, बट क्यूरियोसिटी दैट इज अ चॉइस. चलिए अब सुनते हैं यही वाला गाना जो आशा जी का वो अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस था.

Welcome back to Sunsara Radio, Naira 99.9 FM, HD4 101.9 FM, or 4090 AM. अब थोड़ा म्यूजिक से बाहर आते हैं बिकॉज समटाइम्स वी सेलिब्रेट लेजेंड सो मच दैट वी फॉरगेट देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड द लेजेंड. आशा जी की लाइफ वाजंट ऑलवेज इजी. हर फर्स्ट मैरिज वाज डीपली डिफिकल्ट. शी बिकम अ मदर यंग. शी वेंट थ्रू एनॉर्मस पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस एंड लेटर इन लाइफ शी फेस्ड फास्टिंग पर्सनल लॉसेस इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हर डॉटर इन 2012 एंड सन In 2015, I don't want to turn someone's pain into entertainment because grief is not a trivial fact. But there's something important in how Asha Ji's continued to live. She continued to work, continued to perform, continued to laugh, continued to create. And that tells us something about resilience. That doesn't mean like you don't hurt. It means like you learn how to keep living while getting the hurt. हम सब के लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम पब्लिक में बात नहीं करते, बट दे आर एंड समटाइम्स द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम मे हैव फॉट द हार्डेस्ट बैटल्स टू गेट देयर. सो व्हेन वी हियर आशा जीज लाफ, व्हेन वी हियर दैट मिसचीवस टोन, राइट, व्हेन वी हियर हर परफॉर्मिंग, मे बी वी आर नॉट जस्ट हियरिंग एंटरटेनमेंट. मे बी वी आर हियरिंग सर्वाइवल टर्न इनटू आर्ट. And that's why her voice feels so human. It has flirtation, but it also has pain. It has confidence, but it also has vulnerability. It has laughter. And somewhere underneath, experience. Aaj unka birthday hai, so instead of saying happy birthday to her, I want to say thank you. Thank you for showing us that a woman can reinvent herself, that an artist can refuse a label, that age doesn't have to end curiosity, and that sometimes the best way to answer life is simply to keep singing or epic song. Amazing. You will dance on this number. Please listen to this. And I'll be back in 5.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए